इश्क तो इश्कियत की ईटा में एक क इश्क तो इश्कियत की ईटा में एक क इश्क तो इश्कियत की ईटा में एक क पत्सो सोक आग नमोंग बासी ए वो से ए नकब ए या का ए मुआ ए वो से ए नकब ए या का ए मुआ ए वो से ए नकब ए या का ए मुआ पत्सो सोक आग नमोंग बासी